गल राम दे नां दी है, पर सतगुरु ने क्यों बुलाया? वो कह लगे मैं तेरी जात नूं आवाज नहीं दित्ती, तेरी जोत नूं बुला रहा। जिहड़ी जोत इस गल दी गवाही कर रही है, सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले, उस तो बिना कौन बोल सकता है? फिर कहिंदे ने

0: कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हर फिरे कैद कबीर कबीर हरी पिछे पिछे फिरदा पे कबीर।
1: ये कड़ी पौड़ी
0: गुरु जेड़ा है वो सिख नू प्यार कर लगता है।

0: ना भजिया जाई कब भजत भाई
1: चार
0: सब कैसे गुण गई है
1: चार पा
0: वो सिंह गुंग मुख सब कैसे गुण गई है
1: सिंह
0: पर है सब कदम

0: सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहि मिटावो।
1: सिमरो जहाँ सुख सुंदर एक है, नाम जपता गया।

0: सिद्ध लोड़ न आही राम रोहाई।
1: अगे पैसा भी कहते ने
0: खुश उम्र के दरिया

दर्शन परसे हैं गुरु का, जन्म मरण दुख जाय। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत साढ़ बिखै बिखाही। माया मोह परम पै पुरे, सुतदा रास्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुरसंगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई।

जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण नांग वावै रहाउ। जो किछ करे सो आपे स्वामी हर आपे कार कमावै, हर आपे ही मत देवै स्वामी, हर आपे बोल बुलावै, हर आपे पंच तत् विसथारा, बिच धातु पंच आप पावै, जन नानक सतगुर मिले आपे।

वीर करारी गावन पंडित पढ़ नरखी सर जुग जुग वेदा नाले गावे हैं मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ भयाले गावन रतन उपाय तेरे आठ सठ तीर्थ नाले गावे हैं जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे गावे खंड मंडल पर पंडा कर कर रखे तारे सही तुदन गाव हैं जो तुद पावन और ते तेरे भगत रसाले और केते गाव नसे मैं चेतन आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहब साचा साची नाही है पियोसी जाय ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन हो पाई कर कर वेखा है किता अपना जब तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई कर सी हुक्म न करना जाई सो पातशाह शाम पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शर्म बद जोड़ी ध्यान की करें बेभूत खिंथा काल कुआरी काया जोगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मंजित है जग जीत आदेश से आदेश आद नील नाद नात जुग जुग एक कोवेश भुगत ज्ञान दया भंडारण कटकट व जहनाद आप नाथ नाथी सब जैन की हीरे दिस देवरा साध संजोग बजोग कार चलावें लेखे आवें भाग आदेश से आदेश आद नील अनाद अनाहत जुग जुग एक कोवेश।

ज्ञान के अंत नयंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड जिथे नाद विनोद कोढ़ आनंद शर्म खंड की बाणी जोर जिथे और न कोई होर तिथे जोध महाबल सूर दिन में राम रहे परपूर तिथे सीतो सीता महिमा माही ताके रूप न कथने जाहे ना हो मरे न ठाके जाहे जिनके राम बसे मन माहे तिथे भगत बसे कह लो करे आनंद सचे मन सोई सच खंड बसेन्द्र।

करुणालया है, अर्गालया है, कल खंडन है, मैं मुंडन है, जगदेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्वभारण है, जगत के धरण है, जग के करण है, मन मान्या है, जग जान्या है, सर्वंग पर है, सर्वंकर है, सर्वपाश है, सर्वनाश है, करुणा कर है, विश्वंबर है, सर्वेश्वर है, जगदेश्वर है, ब्रह्मांड से है, कलखंड से है, परदे पर है, करुणा कर है, जप जप सप तप है, कृता कृता अमृत अमृत है, अमृता अमृत है, करुणा कृत है, अकृता कृत है, तरणी कृत है, अमृतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, अमृत अमृत है, अजबा कृत है, अमृत अमृत है, निर्नायक है, कलकायक है, विश्वंबर है, करुणालय है, निरपनायक है, सर्वपायक है, बहुपंजन है, अरगंजन है, रपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वकृत है, हरता कर है, हरता हर है, परमात्मा है, सर्वात्म है, आत्म वास है, जस के जास है, पिजंग प्रयात शंभ, नमो सर सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकार नमो तेज तेजे, नमो वृंद वृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग दाम संग शांत रूपे, नमो परम रतंग रतंग स्वरूपे, नमो योग योगी, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्र, नमो ध्यान ध्याने, नमो ज्योति ज्योति, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो बान बाने, नमो कलय कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे नादिंग भूते, अलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बांके, अभंगी स्वरूपे अनंगीय नामे, दृभंगी दृगाले अनंगीय कामे, एक अचरी छंद अजय अलय पय वय पूजु अनाश गाश गंज पंज लख बख गल दयाल लेख बेख अनाम काम काटा नाथे प्रमाथे जो नियमोनि नरागे नरंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग परमंग गंजे लेखे भुजंग प्रयात छंद नमाज तल प्रणामी समाज तल प्रणाशे अगंजल नामे समाज तल निवास निरकामंग बभूते समाज तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणाशी सो धर्मंग बभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणाशी ग्रीमल कनिंदा समाज तल निवासी जैव भूते जैव ग्रीमे हरियंकरियं करीम रहीमे चतर चक्र वारती चतर चक्र भुगते सुयम पव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणाशी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग भूते चतर चक्र वारती चतर चक्र भुगते सुयम पव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणाशी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग भूते सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ दाव प्रसाद सवैये को ओंकार सतगुर प्रसाद ताव प्रसाद सवैये पातशाही दसवीं श्रावक सुध समूह सुधान गए देख प्रयोग कर जोग जदि गए सूर सुरार्दन सुध सुधा देख संत समूह नेक मति गए सारे ही देश को देख रहे हो माता को न देखे प्राण पति गए श्री भगवान के श्री भगवान की भाई कृपा हूँ देख रति बिन एक रति के माते मदंग जरे हर संग अनूप तंग सुरंग सवारी कोट तरंग करंग से कुदत पवन के गौन को जात निवारी भारी भजान के भूपली वदन आवशीष न जात बिचारी ते भय तो कहां पै भूपद अंत को नंगई पाए पदारी जीत भरे सब देश दुसान को बाजत ढोल मृदंग नगारी गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हंस नहे हजराए यारी भूत भविख भगवान के भूपद कौन गने नहीं जात बिचारी सरी पात सरी भगवान भजे बने अंत को अंत के धाम सुधारी तीर्थ नान दय दमदान सुसंजम नेम अनेक सिख वेद पुराण कदेव पुराण जमीन जमान सुवान कबिख पौन आहार जति जतार सब सब चार हजार के लिखय श्री भगवान भजवन भूपत एक रति बन एक न लेखय शुद्ध सुभा दुरंत दास सुशासना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परि मन मह करू पर्वत पंखल नहलेंगे तोर हरीन मरोर आसन मत मदंगन मान वालेंगे श्री पा श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान लदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार बचारे सर गिदार पछैया तोर तदे समलंद वासन मत जान के मान मलैया गाड़ी गड़ान को तोड़न हार सुवात नी जग जार लवैया साहिब श्री सब को सरनायक जाच कनिक सुख दवैया
दान बदे फिरंदन साचर भूत भवैख भवान जपेंगे। जीव जते जल में थल में पाली पल में सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन बाढ़ जात तोन बापन के बहु पुंज खपेंगे। साध समूह प्रसन्न फिर जग सदर सब अब लोग जपेंगे। मानव इंद्र गजेंद्र नरात बजोंतर को राज करेंगे। कोट स्नान गजात गदान अनेक सुंबर साज भरेंगे। ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपद अंत पसे जम पाठ भरेंगे। जय नारद सचिपद के पर सह पाठ

परलोक आयो बास की अभ्यांत बैठ गए सही ऐसे सुबह बतायो साच कहो सुन ले सब जन प्रेम की ओ जनी प्रपायो गाहू ले पान पोई करे सर गाहू ले लिंग करे लटकायो गाहू लख वर बाची दिशा में गाहू बिछा को शी सुनवायो को बतान को बुझद है बस को मृदान को बुझन दायो गुर करे और जो सब ही जाग

दे मुझे भरे आई मरण काल का त्रास निवरे आई हो जो सदा हमारे पछा सरिया सज कर रचा राख रे हो मैं राखन हारी साहिब संत साहिब प्यारे

सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सब कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहीं हमारा।

काल निकट न आए रक्षा हो ताएं सब काला दुष्ट रिष्ट टर तत्काला कृपा दृष्ट तन जहन हरि हो दाके दाप दन कमो हरि हो रद सद कर्मो सब होई दोष शास्व सक न कोई।

क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद श्री राजा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना बसाया गुर प्रसादी हर मन वसया गुरु लिखया पाया कह नानके शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुर से जत लाया हे नेत्र मेरे वार तुम मैं जो तरी हर बिन वरन देखो कोई हर बिन वरन देखो कोई नदरी हर निहालया हे वे संसार तुम देख दे हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझा जावे का हर कहे हर बिन वरन कोई कहे नानके ने तरंद से सतगुर मिले आंदे बदराइट होई हे श्रवणो मेरे हो साचा सुनने नु बठाए साचा सुनने नु बठाए शरीर लाए सुनो सतबाणी जत सुनी मंत्र हरिया हुआ रसना रस माणी साच लख बडाणी ताकि गद कही न जाए कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवा साचा सुनने नु बठाए हार जियो गुफांदर रख कहे वाजा पवन बजाया बजाया वाजा पवन नौ दुवारी प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया

हार जान राम नाम गुण गावे। जे कोई नंद करे हर जन की अपना गुण न गवावे। हार जान राम नाम गुण गावे। जे कोई नंद करे हर जन की अपना गुण न गवावे।

0: सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कट निकट महला पहला
1: वड्डी वड्याई जा वड्डा नाम वड्डी वड्याई जा सच न्याम वड्डी वड्याई जा नित जाने अलाव

पंखी भोंदे ले नाड़ पवाइए जंत नानक पौंदिया गणत नयंत बंधन बंद पवाए सोए पाया कृत नचे सब कोए नच नच हसे चले से रोए उड़ना जाही।

0: द्वापर रथ तपै का सत्यग्रथ वाहो कलयुग रथ अग्नि का कूड़ अग्रथ वाहो महला पहला।
1: राम कहे चिदंबर स्वामी चक मया छह साथ रहे
0: सब कुछ सस्मा ऋग कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैं सूर नाइल प्रच
1: नान तो मुखन प्रप
0: जुज में जोर चली चंद्रावल कहन कृष्ण जादम भया
1: पार जात गोपी ले आया इंद्रा बन में रंग किया कल मैं बेत सरवण हुआ नाव खदाई अलों भया नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल

प्रभु के सिमरन दुख जम नसै, प्रभु के सिमरन काल पर हरै, प्रभु के सिमरन दुश्मन तरै, प्रभु सिमरत कछु बिगन न लागै, प्रभु के सिमरन अंधन जागै, प्रभु के

जय मार्ग के गने जाए न कुसार, हर का नाम उहां संग तुसार। जह पैंडे मह अंध गुबार, हर का नाम संग उजियारा। जहां पंथ तेरा को न सियानो, हर का नाम तै नाल पुशानो। जय महा प्यां तप्त बहु काम, तह हर के नाम की तुम्हें उपर शाम। जहां त्रिखा मन तुझ अग्रखाय, तै नानक हर हर अमृत बरखाय। भक्त जना की बर्तन नाम, संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की कोट, हर कै नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद।

नौखंड पृथ्वी सरचर जीवै महा उदास सर सीवै अगन नहे होम तरान कनक असव है वर कुंदान न्योली कर्म करे बवासन जैन मार्ग संजम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावै तो पीहो मैं मैल न जावै हर के नाम

सगल समगरी संत सात दसा जीने हस्त पाव कन नेत्र रचना किसे त्या कवर संग रचना ऐसे दोख मूर अंध ब्यापे नानक काड ले हो प्रभ आपे आद अंत जो राखन हार जिसों प्रीत ना करे गवार जांकी सेवा नव निज पावे तांस्य मूड़ा मन नीलावे जो ठाकर सद सदा हजूरे ताको अंदा जानत दूरे जांकी टहल पावे दर गए मां जिसे विस्तारे मुग्ध अजान सदा सदा इपुलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्या कौडी संग्रचे साथ छोड़

जय प्रसाद ग्रह संस्कृत बसना आकाश सिमरत सिरसना जय प्रसाद रंग रस योग नानक सदा त्याई है त्यावन योग जय प्रसाद पाठ कंबर हटावे तिसर त्या कर अवर लुभावे जय प्रसाद सुख से विसई जय मन आकर का जस गावी जय जय प्रसाद तू सबको मान मुखता को जस रसन बखाने जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जप को दरगह मान पावे नानक पत से ती कर जावे जय प्रसाद आरोग कंचन देही लेव लावो तिस राम सने जय प्रसाद तेरा ओला रहते मन सुख पावे हर हर जस कहते जय प्रसाद तेरे सगल सिद्धता कह मन सरनी पर ठाकर प्रभता कह जय प्रसाद।

साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्व थान कम नानक साध के संग सफल जन्म साध के संग नहीं कटका दर्शन पेट तो होत निहाल साध के संग कलूख धरै साध के संग न

किस भगवती की मत उत्तम होवे। भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्पे विष्ण शरीर, हर के चरण हृदय बसावे। नानक ऐसा भगवती।

साध संग पावै जन को कर कृपा अंतर तारे पश प्रेत मुग्ध पाथर को तारे।

आज्ञाकारी बपरा जियो जोत पावे सोई फुनथी कबहू ऊंच नीच में बसे कबहू सोग हरक

अहंकार, अंक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर अवतार, अंक जतन कर आत्म निंद्र वह हर दर गए तो कैसे गए, आप को जो पला कहावे किसे पलाई निकट नया, सर्व कीरे जा का मन होए कौ नानक ताके निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख नाही कोई, जब ये जाने मैं किस करता तब लग गर्ब जोर में फिरता, जब तारे को बैरी नीत तब लगने चलना ही चीत, जब लग मो मगन संगमा तब लग धर्म राय से जाए, तब कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छूटे, सहज कटे लटावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे, अनक भोग बिठिया के करे न तृप्तावे खप खप मरे, बिना संतोष नहीं को राजा स्वप्न मनोरथ तिथे सबका जय, नाम रंग सर्व सुख होए वडभागी किसे प्राप्त होए, करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप, करन करावन करने हार इसके हाथा विचार, जैसी दृष्टि करे तैसा हो आपे आप आप प्रभु सो, जो किसी नो सो अपने रंग सबके दूर सबू के संग,

संत का निंदक राज देहीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दोख में दोख, नानक संतावे ता उसका पी हो मोक, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसी का नहीं मित, संत के दुखी को डांट लागे, संत के दुखी को सब त्याग, संत का दुखी महंकारी, संत का दुखी सदा भिखारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख ना सुख से तरे, संत के दुखी को नहीं था नान संत पावे ता लय मिलाए, संत का दुखी अद भी ते टूटे, संत का दुखी टूटे काज ना पहुंचे, संत के दुखी को उद्यान फरमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी

चेतन मंत गनी संसार मन तन मुख बोल हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक शन इत उत की सुधी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिने निरंजन जानिया गुरु प्रसाद अपने आप बुझे जिसकी जानो तृष्णा बुझे साध संग हर हर जस कहत

सर्व कला पर पूर प्रभ दृथा जन नहार जाके सिमरन उदरी है नानक तुस बलह।

हर नाम रूपवंत होए नाही मोहे सब की जोत सगल कर सोहे तनमंता होए क्या को गरबै जहां सब कुछ किसका दिया दरबै अत सूरा जे को कहावे प्रभु की कला बिना कहता जे को हुए बहे दातार जिस दिन हार जाने गवार जिस गुरु प्रसाद

रूप न रेख न रंग किसे त्रैगुण ते प्रपिन किसे बुझाए नानका जिस होवै सूर पर सनस्तरी अबनासी ब्रह्मन में राख मान की तू प्रीतिया चुते पर नहीं किस कोई सब निरंतर एको सोय आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर रही सुजाना पावन परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शंद साध चोरी

आनंद रूप मंगल सजा कै सर्व थोक सुनिया करता कै राज में राज जोग में जोगी तप में तपेश्वर कृत में भोगी त्याए त्याए पगतै सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जाके लीला कीमत नाय सगल देव हारे अवगाह पिता का जन्म कै जाने पूते सगल तुरोई अपने

जन का सेवक सोबत पागे जन का संग एक लिवलागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे गुरु प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आदि सच जुगाद सच है ते सच नानक होशी ते सच अस्तरी चरण सत सत प्रसन्न हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत देखनहार नाम सत सत जावनहार आप सत सत सब तारी आपे गुणकारी शब्द सत सत सबता सुरत सत सत जस सुनता दूजनहार कैसा सब हो नानक सत सत सब सोए सत स्वरूप हृदय जनमानिया कन करावन तन मूल पछानिया जां कै हृदय विश्वास प्रभ आया तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया पैते

एक नारायण मिला नानक एक, ठाकर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकर का सेवक सदा पुजारी, ठाकर के सेवक का मन प्रतीत, ठाकर के सेवक के निर्मल रीत, ठाकर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक

मोह माया के संग न ले मन में रख हर हर एक अंधकार दीप प्रगासे नानक परम मोह दुख तहते नासे तप्त मह ठांड वरताई अनंत दया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंधे से साधु के पूर्ण उपदेशे पौ चुका निरप होए बसे सगल प्यार मन ते खै नसै जिसका साथ कृपा ताई साध संग जपना मुरारी चित पाई चूके प्रम गवन सुन नानक हर हर जस सरवन निर्गुण आप सरगुण पियो कलाकार जिन सगली मोही अपने चरित्र प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए।

सिमरत सासत बेद विचार हर की भगत करो मन लाए मन बंसत नानक फल पाए संग न चालस तेरा तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुत नी

अनक बिचार एक के पहे एक रात त्रास गए मन तन अंतर एक सबरता गुरु प्रसाद नानक एक जाता।

पानी प्रभ की सबको बोले आप अडोल ना कबू डोले सर्व कला कर खेल खेल मोल पाइए।

प्रभुसोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त निसरदा भगवंत तन तन तन जन आया जिस प्रसाद सब जग चराया जन आवन का ईश्वर जन का संग चित आवेना आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक जन को सदा नमस्कार श्लोक पूरा प्रभु आराध्या पूरा जग का नानक पूरा

मन अंतर की उतर चंद आज अंत त्यागो तरंग संत जना की दूर मन मंग आप छोड़ बिनती करो साध संग अग्न सागर करो हर तन के परलिहो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद।

सावधान एकाग्र चित सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निदान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण हो प्रदान पुरख प्रगट सब लोय सब ते ऊंचे

0: गुण नाम सुखमनी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: किरबू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो तुसी ए प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित कीता जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानु सुझाव दिंदे रहोगे।
2: ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
3: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
4: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

वानरा माज की वार ना सिद्ध साध का धरा अस्त एक बिगर कोई एक तुई एक तुई। उस पुरातन महापुरुष ने कहा कि कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा नकू जब आपा पर का मिट गया जत देखू तत तू तू शब्द सीने विचों निकलिया ते लिखण वाला लिखारी गुरमुख लिखी गया सोलह वरी अज भी संकेत मात्र उते लिखे है जुड़ी कोई सुरत घंटिया बद्दी पपीए की तरह उस परमात्मा नु पुकार दी है। फिर जेड़ी सुरत चुभी है उस दी असी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी चो देखी ते वैसे जिस दिन सच्ची मुची सिख अपने अंदर दी सुरत नु वेख के जिंदगी जीन लग पेगा शायद एदी भटकना मुक जाए। जिन्ना मर्जी बाहर भजी जाए जितनिया मर्जी बाहर दियां गल्लां करी जाए याद रखियो पत्ते झाड़ियां कदी भी खरियावल नहीं रहिंदी रुख ओही खरे रहणगे जिन्हां दियां जड़ां विच कोई पाणी पाएगा। पर जड़ दिसदी नहीं पत्ते दिसदे ने फुल फल दिसदे ने पत्तियां नूं झाड़ियां हरियावल नहीं रहनी जड़ां विच पाणी पाया हरियावल रहनी है। दृष्ट मान इंद्रे असी देखने हां असी इन्हां नूं झाड़न पूंजन ते लग पए हां झाड़ियां पूंजिया इन्हां फिर भी सुक जाणा है इन्हां नूं भी खेड़ा तां मिलेगा जदों अदृष्ट मन नूं बाणी दा पाणी मिलेगा। अदृष्ट जड़ दिसदी नहीं पर हरियावल दी सारा खजाना उहदे विच पिआ है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत बाणी विच जो भी कोई सुरत की है वैसे तो असी ये जरूर कहने सुरत की चीज है सुरत दे अर्थ सोची भी नहीं। सुरत कोई इंसान ऐसा नहीं जिन्हों परमात्मा ने सुरत नहीं दिती। रोज सिमरन च बैठे हैं पता नहीं लगता सुरत किधर भजदी पई किधर दौड़ती पई है। हजूर ने कहा जिहड़ी चुभी कोई सुरत है वह कर्मखंड की वासी है चुभी कोई सुरत निकलती नहीं। हजूर दे बचन ने कर्मखंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर तिथै जोध महाबलसूर तिन मैं राम रहा भरपूर चुभी कोई सुरत है तिथै सीतो सीता महमा माहे ताके रूप ना कथने जाने। सीतो सीता सीके दे अर्थ कई सज्जन सीता भी कर दे पर सीतो सीता जुड़िया होया सी कहने कपड़ा सीता शब्द सीता जरूर मिले है। हजूर ने बाणी च एदा भी वेरवा कर दिता कहन लगे एदी तुलना कपड़े सीते नाल ना केवल कर ली क्योंकि सीते कोई कपड़े भी छिज जाते ने पर जुड़ी कोई सुरत ना पुरानी हुंदी है ते ना कदी छिजदी है ते ना सीती हुई उतरदी। रामकली राग च दो श्लोक आउंदे ने कि वेल पंजाया कट बुनाया कट कुट कर खंभ चढ़ाया लोहा वड्डे दर्जी पाड़े सुई धागा सीवै क्यों पत पाती सिपती सीपै नानक जीवत जीवै। अर्थ वेल पिंजाया दो शब्द कच्चे ने पहला कपा वेलने विच वेली फिर रूह नू पिंजिया वेल पिंजाया कत बुनाया फिर कत के सूत तैयार कीता ते कपड़ा बुनिया। वेल पंजाया कत बुनाया कत कुट कर खुंभ चढ़ाया लोहा वड्डे कैंची कट दिए दर्जी पाड़े सुई धागा सीवे लोहा जेड़ा कैंची कट दिए सुई धागा सौंदा है। कहन लगे जिवें पाटे हुए कपड़े सुई ते धागे न सीते जांदे ने ते जिन्हां दी इज्जत जिन्हां दी अंदर सुरत टुट गई कटी गई पाट गई वो जे जुड़ सकती है ते केवल परमात्मा की सिफत ते ओदी याद राही इयों पत पाटी सिफती सीपै नानक जीवत जीवै। हुण अगला वेरवा हजूर ने कर दिता इन्नी कृपा कीती कहन लगे होए पुराना कपड़ पाटै मता ए चौके तुरिया फिरे कि जिवें सीण मारीए इसे तरह सुरत जुड़ गई। कहन लगे होए पुराना कपड़ पाटै सूई धागा गंढै मां पाक को चलै ना ही घड़ी मोत खंड है पर सच पुराना होवे ना ही सीता कदे ना पाटे चुभी रही उखड़े ना सच पुराना होवे ना ही सीता कदे ना पाटे। वो जुड़े हुए

परमात्मा की साजी हुई इस दुनिया में कुछ वस्तुआं ऐसा हैं जो एक बार मिलदिया ने बार बार नहीं, उन्हां चो एक हैं मापे। रब तां किसे ने तकिया नहीं, पर जे तकना होवे तां मापिया चो जरूर तकिया जा सकता है। किन्ने वड्डे भागां वाले ने ओ लोक जिन्हां दे सिर ते मापिया दा छाया मौजूद है। चौथे पातशाह ने माता पिता नाल करन वाले झगड़े नूं पाप कहा है। साहे पूत झगड़त हो संग बाप, जिन के जने वडीरे तुम हो तिन सिया झगड़त पाप। आओ कमाइए चौथे पातशाह दे वचना नूं, मापिया दा करिए सत्कार जिन्हां ने सुखा सुख सुख के सानू परमात्मा तो हासिल कीता। मां ने 9 महीने गर्भ च रखिया, खैर मंगी जन्म दिता, आप गिल्ली था ते सानू सुखी था पाया। अपनी छातियों अमृतमई दुध पिलाया, लिखाया पढ़ाया, सूझ बूझ दिती ते होर बहुत कुछ। ऐसे महान माता पिता दा देन कई चुक नहीं दिता जा सकता, पर रब समझ के उन्हां मापिया नूं सत्कार जरूर दिता जा सकता है।

सतगुरु तेग बहादुर साहब बड़े सुंदर तरीके नाल समझा गए हन। धन दारा संपत सगल जिन अपनी करमान, इन मैं कछ संगी नहीं नानक साची जान। इंसान जानदा होया भी के इना दौलता जमीना ते संगियां साथियां ने साथ नहीं जाना, फिर भी प्रीता पाई बैठा है। आन्या बहान्या च जिंदगी दा लम्मा हिस्सा बर्बाद कर लिया। किसे शायर ने लिखिया, गुजरे साला नू वेख पछताएगा तू, हाथी आपने गुजर गए साल किथे, नहीं कौटियां कीतियां पुन बंदे, अगे गया नू लभणे लाल किथे, बांदा टुकना हथी दा दान करिया, अगे खंड ते खीरां दे थाल किथे, पैसा अर्थ गरीबां दे लाया ना तू, ओ अगे लभणे दौलता माल किथे, नंगा देखना किसे दा तन कजिया, अगे लभणे भला विशाल किथे, बंदे जिन्हां नू समझदा अपने तू, जाना अंत प्यारिया नाल किथे। दया सिंह दी गौर नाल गल सुन लै, ओ सुनन वालिया तेरा ख्याल किथे। इंसान दा जीवन इउं है जिवें इक पंछी किसे दरख्त ते रात कट के अगाह हो जांदा है, उवें इंसान ने भी हो जाना है, पर उस अगाह दी चिंता नहीं करदा। बाणी कहंदी आ, जो कर छड गवावना सो लगा मन माहे, जिथे जाए तुद वर्तना तिस की चिंता ना आए। ऐ इंसान जरा झाती मार, साडे दादे परदादे वड्डे वडेरे भला इथों की लै गए, कुछ भी नहीं। जद ओ नहीं लिजा सके, लिजा आपां तो भी नहीं होना। बंदे दे जीवन दे दो लैना दास दे साथी है, इंज कह रहे ने।

सुभाग्य है पाठा वाला कार्य, शुभ पाठा वाला, शुभ कर्मा वाला कार्य, हृदय कार्य। क्योंकि हृदय के कार्य में ही शब्द नहीं जाना, एक साथ नहीं गुरु अनेक समाते रख देने, ये बाणी जो जीव जाने, बाणी ने कर्म विच जीव विच वसना, हृदय विच वसना। गुरु ने बाणी विच आख्या जिनको नजर कर्म होवे हृदय च ना समानी, ये बाणी गल हृदय च वसन दी। गुरु कहते हृदय के घर विच भागा वाले हृदय के घर विच पंज शब्द बजे। लो ऐसे रुकना चाहिए, ये पंज शब्द क्यों? योगियों के पंज तरह के साज ने। मैं कह रही थी गुरु पिछली बार इस सब्जेक्ट से दो दिन पूरा होया सी कि योगियों का योग मत से गुरु नानक का योग मत पैदल किवें तुर जाते हैं, हर एक चीज बराबर से ले जाते हैं। लै तेरे को आ, मेरे को आ, तू श्वासों की पवन में चढ़ाना, मैं गुरु पवन गुरु जड़ा है।

भगत खजाना गुरमुख जाता सतगुर बूझ बुझाई संत गुरमुख दे वडियाई भगत खजाना गुरमुख जाता

अपनी सिपा सलार रानी की ललकार सुन के डिगे हुए हौसले बुलंद हो गए। दोबारा फिर लड़ाई शुरू हो गई। पटियाले वाले मराठियां नाल सारा दिन जाना तोड़ के लड़े। जदों रात पै गई तां सिंघां ने राणी नूं कहा, वैरी ज्यादा हन, सानू पटियाले नूं मुड़ जाना चाहीदा है। अपने वीरां दा मनोबल उच्चा करन वास्ते भैण ने फिर हल्लाशेरी दित्ती। बहादुर साहिब कौर ने कहा, जो मैदान फतेह करन तों पहला पानी दा घुट भी पीवेगा वह मेरा लहू पीवेगा, जो शस्त्र सुतेगा वह मेरी पत ला के सुतेगा। इस दिल कंबाऊ गल नूं सुन के सिंघ अंतले साह तक लड़न लई मजबूर हो गए। थकावट नाल चूर चूर होए सुते पै दुश्मन उत्ते सिंघां ने आखिरी हल्ला बोल दिता। इस तरह बहादुर साहिब कौर ने पंजाब की पत्त बचा ली। खालसे की इस जित का प्रोफेसर मोहन सिंह ने जो वर्णन किया है उसनू चरण सिंह आलमगीरी का ढाडी जत्था, जीत सिंह आलमगीर, बलैर सिंह मियोवाल, गुरपाल सिंह सरंगी मास्टर छे इउं बयान करते हैं।